0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
3: Attention. The standard commute has been decommissioned.
4: Introducing a system override for your ears.
5: New energy. New perspective.
6: The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email.
9: Your evenings just got an upgrade.
7: The rush hour with ABD.
6: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
10: Pura hafta, rapta barkarar. Jazz lajawab plus offer ke saath. Abhi *5655# dial karo. Aur pao 8 GB data. 4000 jazz minutes aur SMS. Aur 80 dusre network minutes. सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं
11: City FM 89 is now live on WhatsApp.
12: It's so easy.
13: 0314-289-8989.
14: Save, text, voice note or call to get your song played.
13: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
15: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: Trending today.
5: Vision Quest, Marvel's WandaVision spin-off starring Paul Bettany as the android and former Avenger, will officially debut on Disney Plus on October 14th. Disney confirmed the premiere date at its upfront presentation, finally putting a hard date on a project that has been in development since October 2022.
3: City FM 89.
6: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# हैश और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Mornings evolve and so do we.
4: City FM 89 is introducing a brand new host on The Breakfast Show.
5: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your new host on The Breakfast Show.
3: The freshest music, the hottest gossip.
4: And the energy Gen Z lives on.
3: It's bold, it's current, it's your new morning routine.
4: The Breakfast Show.
3: Only on City FM 89.
6: City FM 89. We're playing your song.
4: You're listening to
7: Non-stop hits.
8: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you and the music.
9: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# हैश और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
3: Attention. The standard commute has been decommissioned.
4: Introducing a system override for your ears.
3: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
5: Join ABD as he takes over the streets.
3: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email.
4: Your evenings just got an upgrade.
5: The rush hour with ABD.
3: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
3: You're listening to
4: Non-Stop Hits.
5: No talk. Just you and the music.
6: Back to back starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: City FM 89. We're playing your song.
4: You're listening to
5: Non-stop hits.
6: No talk.
7: No talk.
8: No talk.
7: No talk.
6: Just you
7: and the music.
6: And the music.
4: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
3: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड.
4: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
4: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.
1: City
0: FM
1: 89.
7: City FM 89 is now live on WhatsApp.
8: It's so easy.
1: 0314-289-8989.
9: Save, text, voice note or call to get your song played.
1: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
0: City FM 89.
10: Sounds different.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: City FM 89.
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: Trading, trust me bro.
5: Nice scheme.
6: Committee.
4: Lad barai faro.
7: Ye muft ke investment mashware chodo. Is Eid easy paisa term deposit mein 50,000 ya zyada invest karo aur 13% annual profit ke saath saath 50,000 cash back jeetne ka mauka bhi pao. Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
8: City FM 89 is now live on WhatsApp.
9: It's so easy.
10: 0314-289-8989.
9: Save, text, voice note or call to get your song played.
10: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
11: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to
12: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ. पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
3: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड.
4: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
4: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.
2: Mubarak ho! YouPhone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लाता-दात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
7: City FM 89 is now live on WhatsApp.
8: It's so easy.
1: 0314-289-8989.
8: Save, text, voice note or call to get your song played.
1: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
9: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ 550 रुपए में 60 जीबी डेटा 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ क्योंकि टेलीनॉर है ना यार Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
1: City FM 89,
6: your drive-along companion.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: పాకిస్తాన్
1: ట్రేడింగ్ ట్రస్ట్ మీ బ్రో
2: నైస్ గేమ్
3: కమిట్టి
1: లార్డ్ బరాయ ఫరో
3: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
4: योर लिसनिंग टू
5: फुल डिस्क्लोजर विद सबा बानो मलिक
6: Welcome back to Full Disclosure, one of my all-time favorite collaborations. Here's Ariana Grande and Mac Miller with my favorite part.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupay mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura hafta befikri se. Unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali Nami scheme aur Mali fraud ke pegham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
4: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात
5: ये नेचुरल है
6: तो बेहतर है
5: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्षी जामिशीली
7: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया
8: ड्यूलक्स ड्यूलक्स ड्यूलक्स
2: अवेल फ्लैट 25% एंड 40% ऑफ at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
9: Mubarak ho! Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Uphone se Telenor and Telenor se Uphone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
10: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
11: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है

0: पाकिस्तान
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
3: नई स्कीम
4: कमिटी
5: लाड बनाए फरो
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
7: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89
8: यू आर लिसनिंग टू
9: फुल डिस्क्लोजर विद सबा बानो मलिक
10: Welcome back to Full Disclosure. Here's Tame Impala with Dracula.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: पाकिस्तान। सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी, सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप, 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS, और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री। तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में। जैज, मेरी सुपर पावर। ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है।
1: City FM 89. Sound.

0: इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लाता कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो.
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: लाड बनाए फरो.
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो. इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali nami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare. PTA
4: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
5: Kashi jame shiri sab peete
6: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
7: Mubarak ho. Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Uphone se Telenor and Telenor se Uphone karo laatadaat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
6: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# हैश और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है

0: పాకిస్తాన్
1: ట్రేడింగ్ ట్రస్ట్ మీ బ్రో
2: నైస్ గేమ్
3: కమిటీ
1: లార్డ్ బరాయ ఫరో
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
4: लाइफ लाइफ रिफ्रेशिंग कशी जामिशीली
5: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात
4: ये नेचुरल है
6: City FM 89, we're playing your song.
7: Everybody go!
8: You're listening to
9: Retro 89 with Amir Nasir.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू नथिंग फोन 4A और 4A प्रो, स्लीक डिजाइन, अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस और अब जैज के साथ 5G रेडी। अब अवेलेबल है जैज एक्सपीरियंस सेंटर्स पर अफोर्डेबल प्राइस के साथ। चाहे फुल पेमेंट करें या इजी पोस्ट पे बाय जैज इंस्टॉलमेंट प्लान चूज करें, डिसीजन आपका। जैज आपकी, मेरी, हम सबकी सुपर पावर।

0: 89.
1: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: Light, refreshing, karshi jami shiri.
3: Gulab aur sandal ke khalis harkiyat.
2: Ye natural hai,
4: bhi to behtar hai.
2: Light, refreshing, karshi jami shiri.
5: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्ता वार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
6: पीता

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 PM.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
8: Kashi jame shiri sab peete hain.
9: Sindh ka style hi alag hai. और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# हैश और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में Jazz, meri superpower. Ye offer makhsoos ilaqon tak mehdood hai.
10: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Kashi jame shiri sab peete
4: chicken pox yaad hai ye shingles banke wapas aa sakta hai कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
6: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो.
7: नई स्कीम,
8: कमिटी,
6: लाड बनाए फरो.
8: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो. इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
2: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास.
3: कशी जामे शीरी सब पीते
9: हैं. We're playing your song.
10: Hold on, special delivery coming through.
11: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
0: We're now live on WhatsApp.
12: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
0: It's as easy as 03142-898989.
11: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89, we're playing the song.
13: Attention, the standard commute has been decommissioned.
14: Introducing a system override for your ears.
13: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
15: Join ABD as he takes over the streets.
13: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
14: your evenings just got an upgrade.
15: The rush hour with ABD.
13: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
14: Tune in or get left behind.
1: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
16: Non-Stop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय